0: के साथ न जाए।
1: ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए।
0: मने मार्ग ठाक न पाए मने पथ से प्रगट जाए।
1: मने मग न चले पंथ मने धर्म से

0: पाओ अंतर गति रथ मन लाओ।
1: सब गुण तेरे मैं नाही कोई, बिन गुण कीते भगत न होए।
0: स्वास्थ आत वाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ।
1: कवन सुबीला वक्त कवन, कवन थित कवन वार।
0: गुण सरुति महो कवन, जित होआ आकार।
1: बेला पाया पणती जे होवे लेख पुराण।
0: भक्त न पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान।
1: चित वार ना जोगी जाने रुत महाना कोई।
0: जा करता सिठी को साजे आपे जाने सोई।
1: केव कर आखा केव सलाई, क्यों वरनी केव जाना।
0: नानक के आखन सबको आखे।

0: आई जुगत व्याई तेन चेले प्रवान
1: एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान
0: जेब तिस पावे तिवे चलावे जेब होवे फरमान
1: ओहो वेखे उन्ना नदर न आवे बहुता एहो बिडान
0: आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस
1: असुन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एका वार
0: कर कर वेखे सिरजन हार नानक सच्चे किस

0: सर्वज्ञता सर्वंगांता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता
1: सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंगत्राणं
0: सर्वंगकर्मंग सर्वंगधर्मंग सर्वंगयुक्ता सर्वंगमुक्ता
1: सावल शांतव प्रसाद
0: नवनक्नासिस दैवं प्रकाश्यनंगं स्रूपे पंगं विभूते
1: परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाद विभूते
0: नामित्र पंगी तर काम निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
1: न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते
0: निरसाकं श्री कैमितो मीकस दैवं प्रभा जय है अजा है
1: भगवती शांत व प्रसाद
0: या हजूर के हाजर हजूर में सु सलाम समस्त कलाम है
1: के साहिब दिमाग है के हुसन चराग है के कामल करीम है के राज करहिम
0: रोजी रहंद है के राज करहिंद है करीमल कमाल है कृष्ण जमाल है
1: गनीमल खिराज है गरीबल निवाज है हरीफल शिकन है हिरासल फिकन है
0: वर्णास समस्त निवास गनीमर जाय करहिम है
1: साहिब
0: किरा
1: है के नरकंग
0: पर नास है बेस्तल निवास सर्व भगवान में सर्वान तमाम समस्तल जी जाए
1: परंग परमीश है समस्त लिख
0: है देश लिखे हमें जमा कोले मैं करी मुल कुमाल के जरूरत जमाल है
1: अक्षरंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो बबूत
0: है के आत्म प्रभ है के चलंगा नंग के मितो अभंग है
1: मद पार शांत व प्रसाद
0: मन प्रणाम गुणगान मदामार पर गांजर नर पर पांज
1: अनगन पर नाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड
0: भगवान आस मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम
1: अंशिज अंग आसन अपंग उपमा पार गत मित उदार
0: जल थल मन दस वस पण जल थल मन दस वस बेअंत
1: अनुभवा नास ते तत्व रास आचन बाहो एक सदा
0: ओंकार अद कथनीय नाद खल खंड ख्याल गुरु बरकार
1: कर पर नाम चित चरण नाम अनशिज गात आज जना
0: ਜਗਾਤ ਅੰਜ ਬਾਤ ਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਠੱਟ ਪਾਰ
1: ਧਰਮ ਅਣ ਚੀਜ ਕਰਮ

0: जपाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कल कायक है
1: करुणालय अपनायक है सर्पायक है
0: पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है
1: सर्वकृत है कर्ता करें अर्ता हर है
0: परमात्म है सर्वात्म है आत्म बसे जस की जस है पुचंग पयात चंद
1: नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे
0: नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे
1: संतां संशात रूपे नमो ब्रह्म तत्त्वं तत्त्वं स्वरूपे
0: नमो

0: सेवक से कसबै करता
1: रा करदा करिए सबरन को वास घरिया
0: पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा
1: अवरण ते आऊं जो वर चाऊं स्तम ते पाऊं
0: सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सत्र हमारे मारिए
1: मजय बरिय मरण काल का त्रासन वरिय
0: जो सदा हमारे पच्छा सिरिया तू जो करियो
1: हरचा राखन हारे साहिब संत साहिब प्यारे
0: दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो
1: काल पाए ब्रह्म बाप तरा काल पाए शिव जी अवतरा
0: काल पाए कर भीषण प्रकाशा।

0: निरालम जानत भेद भेद अर आलम
1: रब कर निरलाम बाद नीलो नाद सांब
0: राका मूड़ चारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा
1: बाहन अनुमानत मां मूड़ कछ भेद न जानत
0: महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पिव
1: बदा जिति वरण भन भन तुई देति
0: तुमरा लखा न जाए पसारा के वि सजा प्रथम संसारा
1: स्वरूप रंग भैरव कई भूपा
0: अंडज जेरज से तज किन्नी उत्पुज खान बहोरच दिनी
1: राजा हो बैठा कऊ सिमट भयो शंकर कैठा
0: सगरी शिष्ट दिखाए अचंभव आज जगाद स्वरूप से अंभव
1: अच्छा मेरी तुम करो सिख वार सिख संगरो
0: जिते अटपटे अतपाता सकल मलेश करो रण काता
1: दिया स्तोय तव शरणी परे तन के दोष दुख तो है मरी
0: मूर्ख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे
1: कल कुक बार ते हैं ताके काल निकट न आए हैं
0: अच्छा होए ताही सब काला दुष्ट रिष्ट डरे
1: तत्काला मोहर हो
0: रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह सब सके न कोई
1: संभारा काल।

0: अमृत सदा रहो, हर रंग जप्यो सारंग बाणी,
1: सदा गाओ सच्ची बाणी,
0: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी,
1: कच्ची सुन दे कच्चे कच्ची आख बखानी,
0: हर हर नित करे रसना कहया कछु न जानी,
1: बोलन पैरवाणी
0: कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी,
1: शब्द रता नहीं रे जत जड़ाओ,
0: शब्द रतन जित मन लागा एहो हो आसमाओ,
1: सिति मन

तेरे कावन कावन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा वर्ण ना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना सज्जन सचा पातशाहू सिर शाहां दा शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहू जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहू।

गुर बचनी सुख उपज पाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए भाई हुई है सब की तूर घट घट ब्रह्म पसारिया भाई।

0: आपे भांडे साजने आपे पूर्ण दे एक ने दुश्मन एक चुले रंजने एक ने हाली पैसों को परन कृतन सवारी नानका जिनको नजर करे महला दूजा
1: आपे साजे करे आप जाई पर रखे आप

गौड़ी सुखमनी महला पंजवां श्लोक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदि गुरे नमै, जुगाद गुरे नमै, सतगुरे नमै, श्री गुरुदेव नमै, अष्टपदे सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, काल कलेत नमै मिटावो, सिमरो जा बिसंबर कै नाम जपतवा गणतान कै, वेद पुराण सिमरो सो दाखर, किन्ने राम नाम को आखर।

0: कीमत कौन बखाना है। ब्रह्म ज्ञानी कीमत ब्रह्म ज्ञानी जाना है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सा छटका करता ब्रह्म ज्ञानी सा जीवानी मृता ब्रह्म ज्ञानी मगुर जग जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ कनाथ ब्रह्म ज्ञानी का प्रभात ब्रह्म ज्ञानी का सकलाकार ब्रह्म ज्ञानी आपनकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक
1: निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक पर सगुण स्तारे अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रय रूपण पेख नेत्र साधक संग है करण सुने कहूं की निंदा सब ते जाने आपस को मंद गुरुपुर साहब जी क्या पर हरे मन की वासना मन ते टर इंद्रिय पाई दुख ते रात नानक ऊर्मदे को ऐसा प्रस वैष्णो सोई सुपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते हो भिन्न कर्म करत हो ने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नि बाचै केवल भगत कीर्तन संग राचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होत कृपाल।

Tahre sarımpa ve sarılay bir tarın kutabası akarın kahre narık soruk fırı fırı utar. Anık jatın karı yatım nindirav ve her dırakı ku kaysa gavye yapıs gocu pula kaha ve tese pula inik nayavye. Sarım kirin jaka man hoye kahu nanık ta ki nirmal soye jav lag jane mujte kasoye tav siko sukuna hain koye. Javye jane mein kish karta tav lagar jun mein firta jav tahre ku vairi me tav langne chalna hai chet. जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म रे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक को छूटे सहस कटे उला कोड़तावे त्रिवत न आवे माया पाछे पावे न भोग क्या के करे त्रिवत न त्रिवत आवे खप कमरे बिना संतोख नहीं को राज सुखन मनोरथ विरते सब काज नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसे प्राप्त होए करण करावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावण करणे हार इसके हाथ का विचार जैसे दुष्कृत दासा होए आपे आप प्रभु सोए जो कुछ गिनो सो अपने रंग सबते दूर सबों के सांग है।

रास लोई बतांग राम नाम जब हृदय माए नानक पास सती कर जाए सब अखर को लैन तो आया राम नाम संतन कर पाए तजे मान ले मन मूल राम नाम हृदय में तो लाद खेप संत संग चाल अवृत्या खे जंजाल धन धन कह सब कोई मुख उजल दर कह सो पार बड़ा पारे नानक ता के सत बलहार है चरण साध के धोते भी अर साध को फण जी साधक धुर करो इनान साधु प्रजाए कुरबान साध सवड़ भागी पाए साध संगर कीर्तन गाए अणु बगंदे साधु राखे हर गुण गाय अमृत रचाखे उठ गए संत दरिया सर्व सुख नानक ते पाए मृत को जीवालन हार भुखे को देवत दहार सरण दान जाके दृष्टि माए परुलिखे कर लै न पाए सब कोई तिसका करने जोग ते जन दुसर हुन हो गए जप जन सदा सदा दिन रैनी सब तो निर्मले करनी कर कृपा जिस गुरनाम दिया नानक सो निर्मल थिया जाके मन गुरकी परती तिस जिने आवे हर पवचे भगत भगत सुनिए तैलोए जाके हृदय कोय सच करनी सच ताकी रह सच हृदय सत मुख है साची दे साचा आकार सच वरते साचा पासार पार ब्रह्म जन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक है रूप न रेख न रंग किच त्रै गुंते प्रभिन्न तिसे भुजाए नानिका जिस हुआ सो प्रसन्न स्वय अवनासी ब्रह्मन मेरा मानु की तू परित्याग तिस्ते प्रण किच को सरुण निरंतर स्वय आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गहिर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर को बिंद कृपण ध्यान जल बख्शांद सातरी की चरणी पाव नानक की मुनि राव मनसा पूर्ण सरणा जोग जो गुर पाया सोई हो गए हरण बरन जागने तरफोर तिसका मंत्र जाने हो रे अन ध्रुव मंगल साजा के सर्व थोकनी करदा राज में राग जोग में जोग गीता मैं दुबिस्तर किस्त में भोगी त्याय थे भगत सुख पाए नानक तिस प्रकार नियंत्रण पाए जाकी लीला की मंदनाय सगल देव हरे वगाए पिता के जन्म के जाने पूज सगल परोई अपने सोत सुमत ज्ञान तिन जिंद जिंदास नाम ते आवे सह तय गुण मैं जाको परमाए जन्म रे फिर आवे जाए ऊच नीच तिसके स्थान जैस नावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भी क्रय करंग नाना विद किनु विस्तार पूर्णा सी कंकार नाना चलत करे कि नमाए पूरे पूर्ण सब ढाए नाना विद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाए सब घट दिसके सब दिसके ठाओ जब जब जीवे नान करनाओ नाम कुतारे सगले जंत नाम कुतारे कंड ब्रह्मंड नाम कुतारे समृद्ध वेद पुराण नाम कुतारे सुनन के अंत अन नाम कुतारे का अस्पताल नाम कुतारे सगले कार नाम कुतारे पुरियां सब हवन नाम कुसंग उदरे सो सरुड कर कृपा से अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन कद पाए रूप सत जा का सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान कर तू सत सत जा की बाणी सतपुरख समाज समान सत करम जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मल जिसे जाय तिसे जबल सत नाम प्रभु का सुखदाय विश्वास सत नानक गुर ते पाए सत भजन सत उपदेश सत ते जन जा कृत प्रवेश सत निरत पूजे जय को हे नाम जो तक गत हो आप सत किया सब सत आपे जाने अपने मित गत जिसके सिर सु करणे हार न बूझ करत विचार करते मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वरतिया विस्मन विस्म भय विस्मा जिन बुझा तिसा स्वाद प्रभु के रंग राज जन लय गुर के बिम दार्थ लय वो दाते दू कट नार जा के संग त्रय संसार जन का सेवक सोड़ फाकी जन के संग

अपने जन का पर्दा ढके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को देव डाए अपने सेवक को नाम जपाए अपने सेवक की आपद राखे ताकि कदम कोई न लाके प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक को तेव जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दा जिस पकड़ाए निकी की रीम कर रखे भस्म करे लश्कर को लाके जिसका शासन करते आवता को राखे देख रात मन जतन करत बात इसके करते वृथ जात मारन राखे अवरण को सर्व जिया कह राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जब नान करोड़ खुड़ानी बार बार बार प्रभु पिए पी अमृत मन तंद्र पिए नाम तंजन गुरु घुमाया तिसके चरण दिष्ट आया नाम तन नाम रूप रंग नाम सुगर नाम का संग नाम राजो जन त्रिवताने मन तन नाम में नाम सुमाने उठत बैठ सोत नाम खो नानक जन के सदगाम बोलो जह जे बा दिन रात प्रभु ने जन की नी जात करे भगतिया तुमके चाहे प्रभु ने सूर्य समाये जो हो आओ सो जाने प्रभु अपने को हुक्म बछाने तिसकी मैं कौन बखानो तिसका गुण कह न जान आठ पैर बोलो से हजूर है कहो नानक से जिन पूरे मन मेरे तिनकी ओर ले मन तन अपना दिन जंदे जिन जन अपना प्रभु बछाता सो जन सर्व तो कर दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्शा पाव मिठावे और से अनु सगड़ी साठ तिस जन की तू सेवा ला गया अनजान हुई तेरा नानक तिस जन के पूजो सत पैरा सलोक सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम तिसका संग सिख उदर नानक हर गुण गाव अस्पद सतगुर सिखी गर प्रताप सेवको गुर सदया सिखी गुर दुरमत मल हिरे गुरबचनी हर नाम सिरे सतगुर सिख के बंधन कट गुर का सिख विकार ते हट सतगुर सिखो नाम तंद गुर का सिख उड़पा की है सतगुर सिख कल पल सुवारे नानक सतगुर सिखो जी नाल समारे गुर के ग्रह सेवक जो रहे गुर की अगे मन में सह आप उसको कर कृष्ण जनावे हर हर नाम दे सत्य आवे मन बेच सतगुर के पास तिस के कार्य रास सेवा करत हो नेकामे जिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा से आप करी नानक सो सेव गुरु की मतले बिस बिस गुरु का मन माने सो सेव परमेश्वर की गजाने सो सतगुरु जिस हृदय हर नाव उनक बार गुरु को बल जाओ सर्वधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार में एक अपने किश बम सह सण बलैन जाए नानक ऐसा गुरु फागी पाई है सफल दर्शन पेखत पुनीत प्रसन चरण संग सुखद निर्मरीत पिठ संग्राम गुण रवे पारम की दरगे गवे सुनकर बचन करण अखाने मन संतोख आत्म पथयान पूरा गुरु आख्य जाखा मंत्र दिश बेक संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक दिस पावे ते ले मिलाए जिह बाए कुस्ता तन एक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पोचत प्राणी यगम गोचर पर निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ता की कीमत कि न पाए अनक भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमर सद बलहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद सफल ए हर सुभावे जन कोई अमृत पी अमृत स्वयस्पुर का नहीं कते बिना जाके मन पकड़े उदास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश को दे मुंह माय के संग न ले मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रकाश है नानक परमो दुख तय ते नस तब तुम्हारे ठंड वरता अनंत व्या दुख न टेवाए जन मरण के मिटेंदे से साधु के पूर्ण उपदेश पहुँच चुका निर्भय वसे सकल व्याध मन देखे नस जिसका साधन कृपा तारी सात संग जब नाम मुरारी तित पाए चुके प्रम गान सुन नानक हर हर जस सम निर्गुण आप सरगुण पियो कला धारी सगड़ी ओए अपने जर प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जनाई को सरण निरंतर को सोय उत्पोत्र रूप रंग पै प्रकाश सात के संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बल हारी सलोक साथ न जाले बिन भजन विखिया सगड़ी सार हर हर नाम कमामना नानक हे तन सारस्वत संत जन मिल करो विचार एक सिमरना उधार पाव स्वामी विसार चरण कमल मैं उतार करण कारण सुबर सम्रात दृढ़ कर गहु नाम हर वाते तन संजो भगवंत संजन कने बलमान एक आसरा कमण माए सर्व रू नानक मिट जाए जिस तन को चार कुण रुड़ता है सो तन हर सेवा ते पाव ਜੇ ਸੁਕੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇ ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਕਰੇ ਜੀ ਸੋ ਬਾਖੋ ਕਰੇ ਬਲੇ ਕਰਨੇ ਸਾ ਸੋ ਵਜਰਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣ
अनुगोबाई रोग नजाय रोग कुंडे रोग दलाय सर्वधान में हर नाम धान जब नाम कर गई प्रवान मन प्रबोध हर के नाज दा दिस आवते आवे टाए ता को विघ्न लागे कोए जाकर देवे सेर सोए कल ताती ठंडा हर नाम सिमर सिमर सदा सुख पाव भोवन से पूर्ण है आस भगत पाया तुम बरगा तिद घर जाय सेव नासी को नानी काटी जम फांसी तत विचार कह साचा जन्म रे सोका चोका च आवागण मुड़ी प्रभु सेव्याप त्याक्षण गुरुदेव मृतन जन्म का उधार हर हर सिमर प्राण धार आनुक पावन छूट नहारी ना सिमर सासर सिमर साध वे विचारे हर की बात करो मन लाए मन वंचन नानु कल पाए संग न चाल स्थिर तन तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुतमेत कुटुंबर बंताए ते कुंत गुण कुण सनाथा राजन माय विस्तार इंते कहो कुण छुटकारा सस्ती रथ सवारी झूठा डम सुट पस जिन दिए तुझ बुझना बिगाना।

जाच बिन जाचे विरव दान कर कृपा देव और नाम साधना की मंगो तूर पार में श्रद्धा पूर सदा सा प्रभु के गुण गाव सा सास प्रभु मथया चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत एक कोटे को धार नानक मंगे नाम प्रसार प्रभु की दुश्मान सुख होय हर सभा विरला कोय जिन जाख्या से जंत्र उताने पूर्ण पुरख ने डोलाने सुबर भरे प्रेम रस रंग बजे चाव साध के संग निहाल बंदन कड़ मुग जन पाया जन्म भरन दुख करूंगा छपुनी श्रद्धा सा पूरी राव रहा सा संग हजूरी जिस कर साधन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सुख विसरे घर न पाने सुख जरे किया जाने सुख जन सब कुछ दिया सुख विसरे जीवन जिया सुख जगन मरा के गुरु प्रसाद को बिरला लाख सुख विसर विकते काटे जन्म जन्म घट उठा काटे गुरपुरे ताते बुझाया प्रभु अपना नाम जंत्या साजन संत गुरु एक आम त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख भाव आप जपो हर नाम जपा बिन भक्ति धन हो से सार सर्व कल्याण सुख निधना बुढ़ जात पाए विश्राम सकल दुख आवत नास नानक नाम जपो गुंता सुख जी प्रीत मन बचा मंत्र अंतरे सुहा नेत्र वेग दर सुख होय मन विखे सा चंतोय भगत ना के मंत्र नंग बिरला को भावे संग एक बाधी जगर मया गुरु प्रसाद नाम जबलया ताकि हुमा कही न जाए नानक रहा सर्व समाए प्रभु अक्षण दीन दयाल भक्त सिल सदा कृपाल नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कृपा कर तुरतवा याद गुरु करुण करतार भगत ना के प्राण धार जो जो जप सोए पुनीत भगत पाए लाए मन ही ते हम निर्गुण यार नी चैदा नानक तुमरी शरण प्रभु भगवान सर्व बैकुण मुक्त मुख पाए एक निम करके गुण गायन कराज बूढ़े आई हर के नाम की कथा मन पाए बो भोजन का प्रसंगी रसन जपति हर हर नीत भली सुकरणी सो बातन मंत हृदय बसे पूर्ण गुरु मन सा संग प्रभु दे निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक है सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन की आनानिका आपे ही फिर जा बस वधी जावे आकार कृष्ण दर्शे तब पाप तब कहते होता जब तारी आप सुम समाता बैर भी रोके संकमात जाव इसका वर्ण चे न जावत तब हर सौ को से भाव जाव अपने आप पापम तम ओ का तो परम आपन के लिया वर्ती जा नानी करने हरण दूजा जाव हो प्रभु के उतनी ता बन मुक्त को किस को गुणी जावे का गुण पार तब नरक सुर को कौन उतार जब निर्गुण प्रभु सह स्वाय तब शिव सब को उठाए जावे आप आप अपनी जो तर है तब कम निरकम कतल रे अपन चल तब करने हार नानक डा करम पार अपना शीश को अपने आसन तजन मरण को का विनाशन जा पूर्ण करता प्रभ सोय तब जम की द्रास कहो जोय जावे अवगते गोचर प्रभ एक तब चित्रगुप्त किस पुछ दलेख जब नाथ निरंजन गोचर करते तब कौन छुटे गुण वंदन बाद अपन आप आप ही सर जा नानक अपन उपाप ही पर जा जय निर्मल पुरुख पुरुख पत होता तब निमैल कहो कहत होता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन उपमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय सर रक्त को कीस जय जो स्वरूपी जो संग समाव तय किसे भू काम त्रुता करण करावन करण यार नान करते कर समर जो अपनी शोभा अपन संग मनाए तब कौन माए बा मित्र सदभाए जय सर्व कला पे परवीन तय वेद देव का को चीन जब अपने आप अवतारे तो सगन सगन कहा विचार जय अपने उचे अपने अपनेरा तय कौन ठाकुर कुण कहिए चेरा विषम विषम रह समाद नानक अपनी का जन भाव जय छल अचेत भे समाय मुख से व्याप तुम आपस को आप ऐसे तय गुण का नाई पुर जय कह के गुंत तय कौन चिंत कुछ ला के चिंता जय अपने आप आप तेरा तय कौन कथे कौन सुनने हार बहु बेअंत हुई ते उचा नानक आपस को आपे पहुंचा जय प्रचुर पंचा कार तय गुण मैं किनो विस्तार पाप उनता भई काल को नर को सुर कुंचाव त्याल जाल माया झंझाल हूं मैं मुंह भ्रम पै भार दुख सुख मान बमान प्रकार के वख्या ने अपन के अपनों के लाभ कर देखे खेल समुचे तो नानक जय अवगत भगत आप जय पसरे पास सार संत परदा दो पा कह पैदने उनकी शोभा नु बनी आपे कौते करण चो जया पेरा सुख निर्जोग जिस भाव तुझे अपन ना लावे जिस भाव तुझ के लावे बेशुमार थाक न तै तोलै जो बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक जी जंद के ठाकुर आया पे वर्तन हार नानक को बसरिया दूजा कै दृष्टा रसपति आप कथे आप सुने हार आपे का विस्तार जाते भाव तस्वीर ठोपा अपने पाने रे समाए तुम ते भिन्न कुछ होया अपन सुसा जग